0: जब दिन थे, समय था, शक्ति थी, तब तो तू दुनिया के रंग में रंगा रहा। अब तो विदाई का वक्त आ गया, मौत मजबूत है, किसी भी क्षण यात्रा शुरू हो जाएगी। अब वक्त नहीं है कि गालियों के जवाब गालियों से दिए जाएं, कांटों के जवाब कांटों से दिए जाएं, ईंटों के जवाब पत्थरों से दिए जाएं। अब वक्त नहीं है, अब मौत करीब आ गई। ऐसे तो जिंदगी राग रंग में बिता दी, परमात्मा को न कमा पाया। अब इन आखिरी क्षणों को व्यर्थ के लेन देन के उलझाव में मत लगा। कोई गाली दे, कोई मारे, तू पैर चूम के अपने घर आ जा।
1: भक्तपुरी FM 105.4 MHz सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण आत्मीय श्रोतालाई जीवन दर्शन कार्यक्रम प्रभात फेरीमा हार्दिक स्वागत छ। ओशो भन्नुहुन्छ, प्रेम र ध्यान दुबई यौन ऊर्जाको रूपान्तरण हो। प्रेम साक्षी भाव, ध्यान र मैत्री भावको सन्देशद्वारा तपाईँको रूपान्तरणको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने उनै धार्मिक व्यक्ति ओशो रजनीशले दिनुभएको विचारोत्तेजक प्रवचन अब प्रस्तुत छ।
2: लेकिन चाहे कहीं भी चले जाओ, महावीर कहते हैं संसार में तो रहना ही पड़ेगा। संसार का मतलब ही है सोई हुई चेतनाओं की भीड़। ये भीड़ चाहे बदल लो, चाहे वृक्षों की हो, चाहे पशुओं की हो, चाहे मनुष्यों की हो, ये भीड़ तो मौजूद है, ये स्थिति है, इससे बचा नहीं जा सकता। संसार अनिवार्य है, उससे तब तक बचा नहीं जा सकता जब तक हम पूरी तरह जाग ना जाएं। तो आंसु प्रज्ञ पंडित को भी, जो इस जागने की चेष्टा में सतत संलग्न है, सोए हुए लोगों के बीच रहना पड़ेगा। तो उसे सदा जागरूक रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नींद भी संक्रामक है, इन्फेक्शस है। यहां इतने लोग बैठे हैं, हम सब संक्रामक रूप से जीते। अभी एक आदमी खांस दे तब पता चलेगा कि 10-20 लोग खांसने लगे। क्या हो गया? अभी तक ये चुपचाप बैठे थे, इनके गले को क्या हो गया? अभी तक कोई गड़बड़ ना थी। एक आदमी ने खांसना शुरू किया, 10-20 लोग खांसना शुरू कर देंगे, संक्रामक है। हम अनुकरण से जीते। एक आदमी पेशाब करने चला जाए, कई लोगों को ख्याल हो जाएगा कि पेशाब करने जाना, संक्रामक है। हम एक दूसरे की हिसाब से जी रहे हैं। हिटलर अपनी सभाओं में अपने 10-5 आदमियों को 10 जगह बिठा रखता था, ठीक वक्त पर 10 आदमी ताली बजाते, पूरा हाल ताली बजाता। समझ गया था कि ताली संक्रामक है। 10 आदमी अपने हैं वो ताली बजा देते हैं, फिर बाकी 10,000 लोग भी ताली बजा देते हैं। ये 10,000 लोगों को क्या हो गया, इनकी ताली को क्या हो गया? हमारा मन आसपास से एकदम प्रभावित होता रहता। बीमारियां ही नहीं पकड़ती हमको, फ्लू ही नहीं पकड़ता हमको एक दूसरे से, क्रोध भी पकड़ता है, मोह भी पकड़ता है, लोभ भी पकड़ता है, काम वासना भी पकड़ती है। शरीर ही नहीं पकड़ता जीवाणुओं को, मन भी पकड़ता है। इसलिए महावीर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सोए हुए लोगों के बीच जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि वे चारों तरफ गहन निद्रा में सो रहे हैं। उनकी निद्रा की लहरें तुम्हें छुएंगी, वे चारों तरफ से तुम्हारे भीतर आएंगी। तुम अकेले ही अपनी नींद के लिए जिम्मेवार नहीं हो, तुम एक नींद के सागर में हो, जहां चारों तरफ से नींद तुम्हें छुएगी। अगर तुमने बहुत चेष्टा न की तो वो नींद तुम्हें पकड़ लेगी, वो नींद तुम्हें डुबा लेगी। कोई तुम्हें डुबाने की उसकी आकांक्षा नहीं है, ये कोई सचेतन प्रयास नहीं है, ये केवल स्थिति है। कभी आपने ख्याल किया, अगर 10 लोग बैठे हैं और एक आदमी जवाई लेने लगे, फौरन दूसरे कुछ लोग जवाई लेना शुरू कर देंगे। एक आदमी सो जाए, दूसरे लोगों को नींद पकड़ने लगे। हम समूह का एक अंग हैं जब तक हम पूरे नहीं जाग गए। जब तक कोई व्यक्ति पूरा नहीं जागा तब तक वो व्यक्ति नहीं है, भीड़ है। तब तक वो कितने ही समझे कि मैं अलग हूं, वो अलग है नहीं। इसलिए बड़ी मजे की घटनाएं घटती। दुनिया में बड़े पाप व्यक्ति से नहीं होते, भीड़ से होते, क्योंकि भीड़ में संक्रमण हो जाता है। हजार लोगों की भीड़ मंदिर को जला रही है या मस्जिद में आग लगा रही है, इनमें से एक एक आदमी को अलग करके पूछें कि मस्जिद में आग लगा

भीड़ में व्यक्ति अपने में नहीं रह जाता, भीड़ में उसे लगता है एक सागर है जिसमें बहे चले जा रहे हैं, भीड़ में उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं कर रहा हूं, भीड़ कर रही है, मैं सिर्फ सांस हूं। कभी आपने ख्याल किया अगर भीड़ तेजी से चल रही हो आपके पैर भी तेज हो जाते। हिटलर ने अपने सैनिकों को आदेश दे रखे थे कि जब भी तुम चलो तो एक दूसरे के शरीर छूते रहे। अगर 50 आदमी चल रहे हैं और एक दूसरे के शरीर छूते हैं और उनके कदम एक लय में पड़ते हैं तो आप उस लय में फंस जाएंगे। जब उनका हाथ आपको छुएगा तो उनका जोश भी आपके भीतर चला जाएगा, और जब उनके कदम की चाप आपके सिर में पड़ेगी तो आपका कदम भी वैसा ही पड़ने लगेगा। 50 आदमियों की भीड़ में आप अकेले नहीं रह जाते, आप सिर्फ एक अंग हो जाते, एक बड़ी चेतना का हिस्सा हो जाते, और वो चेतना फिर आपको प्रवाहित कर लेती। जैसे नदी की धार में कोई बहता हो और जब नदी वर्षा के पूर्व में आई हो, जब कोई बहता हो, वैसा असहाय आदमी हो जाता है भीड़ में। इसलिए सारे लोग भीड़ बना के जीते हैं। राष्ट्र भीड़ों के नाम है, धर्म भीड़ों के नाम है। हिंदुओं की भीड़, मुसलमानों की भीड़, जैनों की भीड़, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, रूस, ये सब भीड़ों के नाम है। रूस खतरे में तो फिर सारा मामला खत्म हो गया, भारत खतरे में तो फिर आप व्यक्ति नहीं रह जाते, सिर्फ एक बड़ी भीड़ के हिस्से रह जाते, फिर उसमें आप बहते। राजनीति भीड़ों को संचालित करने की कला है, इसलिए जहां भी भीड़ है वहां राजनीति होगी, चाहे वो धर्म की भीड़ क्यों ना हो, राजनीति आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं धर्म का संबंध है व्यक्ति से और राजनीति का संबंध है भीड़ से। जहां धर्म भी भीड़ से संबंधित होता है वहां राजनीति का रूप है। इसलिए हिंदुओं की भीड़, मुसलमानों की भीड़, ईसाइयों की भीड़, ये सब राजनीति के रूप है, इनका धर्मों से कोई संबंध नहीं। धर्म का संबंध है व्यक्ति से। धर्म की चेष्टा ही यही है कि व्यक्ति को हम भीड़ से कैसे मुक्त करें, वो भीड़ के उपद्रव से कैसे बाहर आए, भीड़ के प्रभाव से कैसे छूटे, यही तो धर्म की सारी चेष्टा है। लेकिन धर्म भी भीड़ बन जाता है, और जब धर्म भीड़ बन जाता है तो मुश्किल हो जाती है, तब कठिनाई हो जाती है। युद्ध में सैनिक ही भीड़ में नहीं लड़ते, लोग मस्जिदों में, मंदिरों में, भीड़ में प्रार्थना भी कर लेते हैं। बह जाएंगे आप, बह जाना निद्रा में भी हो जाएगा, महावीर कहते हैं। इसलिए जागे हुए व्यक्ति को आसपास पूरे वक्त सचेत रहना पड़ेगा। सब तरफ से नींद आ रही है, सब तरफ सोए हुए लोग हैं, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, सब तरफ से बह रहा है। जैसे कि कोई आदमी सब तरफ से गंदी नालियां बह रही हों और उनके बीच में बैठा हो, उसको बहुत सचेत रहना पड़ेगा, अन्यथा वे गंदी नालियां उसे भी गंदा कर जाएंगी। उसकी सचेतना ही उसको पवित्र रख सकती है। इसलिए महावीर कहते हैं सब तरह से जागरूक रहना चाहिए, सब तरह से। इसलिए बहुत अद्भुत वचन उन्होंने कहा है, और किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि महावीर अविश्वास सिखा रहे हैं। महावीर कहते हैं कि तुमने किसी का विश्वास किया सोए हुए आदमी का, तो तुम खुद सो जाओगे। तुमने अगर सोए हुए आदमी का विश्वास किया तो तुम सो जाओगे, क्योंकि विश्वास का मतलब यह कि अब सचेतन रहने की कोई भी जरूरत नहीं। इसे थोड़ा समझ लें, जिसका हम विश्वास करते हैं उस पर हमें सचेतन नहीं रहना पड़ता। एक अजनबी आदमी आपके कमरे में ठहर जाए तो आप रात ठीक से सो ना पाएंगे। क्यों? अजनबी आदमी कमरे में है, पता नहीं क्या करे, नींद उखड़ी उखड़ी रहेगी। रात में दो चार दफा आप आंख खोल कर देख लेंगे कि कुछ कर तो नहीं रहा है। आपकी पत्नी आपके कमरे में सो रही, आप मजे से घोड़े बेच के सो जाते, क्योंकि अब अजनबी नहीं, और जो भी कर सकती थी कर चुकी, अब सब परिचित है, अब जो कुछ भी होगा होगा, इसमें कोई ऐसा नया कुछ होने वाला नहीं, कोई भय नहीं है। आप चेतना खो सकते हैं, आपको चेतन रहने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तो नए मकान में, नए कमरे में नींद नहीं आती, स्थिति नई है, आत्तन नहीं है, नए बिस्तर पर नींद नहीं आती, नए लोगों के बीच नींद नहीं आती।

0: क्योंकि स्थिति नहीं है और थोड़ा सा होश रखना पड़ता है, पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। महावीर कहते हैं जीना जगत में जैसे अजनबियों के बीच ही हो सदा, स्ट्रेंजर्स है ही सच्चाई ये। पति और पत्नी चाहे 20 साल चाहे 40 साल साथ रहे हों, अजनबी हैं, कभी भी कोई पहचान हो नहीं पाती, स्ट्रेंजर्स हैं। मान लेते हैं 20 साल साथ रहने के कारण कि अब हम परिचित हो गए, क्या खाक परिचित हो गए? कोई परिचित नहीं होता, कोई परिचित नहीं होता, सब आइलैंड बने रहते, अपने अपने में द्वीप बने रहते। परिचय हो जाता है ऊपरी, नाम धाम ठिकाना ये सब पता हो जाता है, सकल सूरत, लेकिन भीतर क्या संभावनाएं छिपी हैं उसका कुछ परिचय नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। महावीर कहते हैं किसी का विश्वास मत करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि अविश्वासी हो जाना, अनट्रस्टिंग हो जाना। इसका यह मतलब नहीं कि हर आदमी को समझना कि बेईमान है, हर आदमी को समझना कि चोर है। इससे कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी कि किसी का विश्वास मत करना। वो कहेंगे ये तो हम कर ही रहे हैं, ये हमारी साधना ही है। किसी का विश्वास हम करते कहां, अपना नहीं करते, दूसरे की तो बात ही दूसरी। कोई किसी का विश्वास नहीं कर रहा है, मगर वो अर्थ नहीं है महावीर का, इसे ठीक से समझ लें। हम अविश्वास करते हैं, लेकिन वो अविश्वास महावीर का प्रयोजन नहीं है। महावीर कहते हैं किसी का विश्वास न करना इस कारण ताकि तुम सो न जाओ। निकटतम भी तुम्हारे कोई हो तो भी इतना विश्वास मत करना कि अब होश रखने की कोई जरूरत नहीं है। होश तो तुम रखना ही, जागे तो तुम रहना ही, क्योंकि जो निकटतम है उन्हीं से बीमारियां आसानी से आती हैं, वो करीब हैं उनका रोग जल्दी लगता है। होश तो रखना ही, अगर तुम होश खोकर अपनी पत्नी या अपने पति या अपने बेटे या अपनी मां के पास भी बैठे हो तो उसकी बीमारियां तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारा चित्त पहरेदार बना ही रहे और मन की कोई बीमारी तुम में प्रवेश ना कर पाए। बुद्ध कहते थे कि जिस मकान के बाहर पहरे पर कोई बैठा हो, चोर उसमें प्रवेश नहीं करते। जिस मकान का दिया जला हो और घर के बाहर रोशनी आ रही हो, चोर उस मकान से जरा दूर ही रहते हैं। ठीक ऐसे ही जिसके भीतर होश का दिया जला हो, ठीक ऐसे ही जिसने सावधानी को पहरे पर रखा हो, उसके भीतर मन की बीमारियां प्रवेश नहीं करती, जरा दूर ही रहती है। हम ऐसे जीते हैं कि न कोई पहरे पर है, न घर का दिया जला है, सब अंधकार है घना, चोरों के लिए निमंत्रण है और चारों तरफ हमारे चोर मौजूद हैं। हम गड्ढा बन जाते हैं, वो हम में बह जाते हैं भीतर। ख्याल करें एक उदास आदमी आपके घर आके बैठ जाता है, कभी आपने ख्याल किया कि थोड़ी देर में आप भी उदास हो जाते? एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आदमी आपके घर में आ जाता है, कभी आपने ख्याल किया आप भी मुस्कुराने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते? छोटे बच्चों को देख के आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? छोटे बच्चे उसका कारण नहीं, छोटे बच्चे प्रसन्न है, उनकी प्रसन्नता संक्रामक हो जाती, वो नाच रहे कूद रहे, संसार का उन्हें अभी कोई पता नहीं, मुसीबतों का उन्हें अभी कोई बोध नहीं, अभी वो नए नए खिले फूलों जैसे हैं, ना उन्होंने तूफान देखे, ना आंधियां देखी, ना अभी सूरज की तपती हुई आग देखी, अभी उन्हें कुछ भी पता नहीं। उनको देख के आप भी प्रसन्न हो जाते हैं। छोटे बच्चों के बीच भी अगर कोई उदास बैठा रहे तो समझो कि साधु, मतलब ये कि उसे बहुत ही चेष्टा करके उदास रहना पड़े, बीमार पैथोलॉजिकल रुग्ण। छोटे बच्चों के बीच तो कोई प्रसन्न हो जाएगा। नेहरू को छोटे बच्चों से बहुत लगाव था, उसका कारण छोटे बच्चे नहीं थे, राजनीति की बीमारी थी। बच्चों में जाके वो दुष्टों को भूल पाते थे जिनसे घिरे थे, जिनके बीच थे, जिस उपद्रव में पड़े थे, वो बच्चों के बीच जाके हल्का हो जाता था मन, जैसे कि कोई हॉलीडे पे पहाड़ चला गया, छुट्टी मना ली। छोटे बच्चों के बीच उनका होना इस बात का सूचक था कि नेहरू मन से राजनीतिज्ञ नहीं थे, इसलिए छोटे बच्चों की तलाश थी ताकि इन आदमियों से बचें जो उनको घेरे हुए थे। नेहरू कम से कम राजनीतिक आदमी थे, नियति उनकी वो नहीं थी, नियति तो थी कि वो कवि होते। हिंदुस्तान ने एक बड़ा कवि खो दिया और एक कमजोर राजनीतिक पाया। वो हो नहीं सकते थे, वो कोई उपाय नहीं था उनके लिए, कोई वहां गति नहीं थी, इसलिए बचाव करते थे। वो बच्चों के साथ ही खेलते थे और प्रसन्न हो जाते थे, जैसे वहां उनको निकटता मालूम होती, सामीप्य मालूम होता। जहां भी आप हैं आप प्रभावित हो रहे हैं। कैसे लोगों के बीच आप हैं आप वैसे हो जाएंगे। महावीर कहते हैं कि किसी का विश्वास मत करना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई और हंसता है और आपको हंसी आ जाती तो समझना कि हंसी झूठी है। कोई और रोता है और आपको रोना आ जाता है तो समझना कि रोना झूठा है। न ये हंसी आपकी है न ये रोना आपका है, ये सब उधार है और हम सब उधारी में जीते हैं। हम बिल्कुल उधारी में जीते हैं। एक फिल्म में आप देख लेते हैं कोई करुण दृश्य और आपकी आंखों में आंसू बहने लगते, ये उधार है। कुछ भी वहां नहीं हो रहा है, पर्दे पर केवल धूप छाया का खेल है, मगर आप रोने लगे हैं, ये बता रहा है कि आप किस भांति बाहर से संक्रामित होते। फिर थोड़ी देर में आप हंसने लगेंगे। आपकी हंसी भी बाहर से खींची जाती है, रोना भी बाहर से खींचा जाता है। आपकी अपनी कोई आत्मा है जिसका सब कुछ बाहर से संचालित हो रहा है, उसके पास कोई आत्मा नहीं है। महावीर कहते हैं जागरूक रहना, किसी का विश्वास मत करना। इसका मतलब यह है कि किसी को भी इस भांति मत स्वीकार करना कि वहां तुम्हें असावधान रहने की सुविधा मिले। तुम मान के चलना कि तुम एक अजनबी देश में हो, अजनबी लोगों के बीच एक आउटसाइडर हो, जहां कोई तुम्हारा अपना नहीं, जहां सब पराए, सब अपने अपने हैं, कोई किसी दूसरे का नहीं। लेकिन हम सब धोखा देते। पत्नी कहती कि मैं आपकी, पति कहता मैं तुम्हारा, बाप कहता है बेटे से कि मैं तुम्हारा, बेटा कहता है मां से कि मैं तुम्हारा। सब अपने अपने हैं, कोई यहां किसी का नहीं है। चारों तरफ हम इसे रोज देखते हैं, फिर भी एक दूसरे को कहते रहते हैं मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारे बिना ना जी सकूंगा, और सब सबके बिना जी लेते। मगर यह कठोर है सत्य। महावीर कहते हैं कोई अपना नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि सब दुश्मन हैं, इसका कुल मतलब इतना है कि तुम होश रखना। जैसे कि कोई आदमी युद्ध के मैदान पर होश रखता है, एक क्षण भी चूकता नहीं, बेहोशी को आने नहीं देता, तलवार सजग रखता है, धार पहनी रखता है, आंख तेज रखता है, चारों तरफ चौकन्ना होता है, कभी भी किसी भी क्षण जरा सी बेहोशी और खतरा हो जाएगा। ठीक वैसे जीना जैसे कि प्रतिपल कुरुक्षेत्र है, प्रतिपल युद्ध है। किसी का विश्वास न करना। काल निर्दयी है और शरीर दुर्बल। इन सत्यों को स्मरण रखना कि काल निर्दयी है, समय आपकी जरा भी चिंता नहीं करता, समय आपका विचार ही नहीं करता, बाहर चला जाता है। समय को आपके होने का कोई पता ही नहीं है, समय आपको क्षमा नहीं करता, समय आपको सुविधा नहीं देता, समय लौट के नहीं आता। समय से आप कितनी ही प्रार्थना करें कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती। समय और आपके बीच कोई भी संबंध नहीं। मौत आ जाए द्वार पर और आप कहें कि घड़ी भर ठहर जाए, अभी मुझे लड़के की शादी करनी है, कि अभी अभी तो कुछ काम पूरा हुआ नहीं, मकान अधूरा बना है। एक बूढ़ी महिला संन्यास लेना चाहती थी 2 महीने पहले, बड़ी उसकी आकांक्षा थी संन्यास ले लेने की, मगर उसके बेटे खिलाफ थे, कि संन्यास नहीं लेने देंगे। मैंने उसके एक बेटे को बुलाकर पूछा कि ठीक संन्यास मत लेने दोगे क्योंकि बूढ़ी स्त्री है और तुम पर निर्भर है और इतनी साहस भी उसका नहीं है, लेकिन कल अगर इसे मौत आ जाए तो तुम मौत से क्या कहोगे कि नहीं मरने देंगे? जैसा कि कोई भी उत्तर देता, बेटे ने उत्तर दिया, कहा कि मौत कब आएगी कब नहीं आएगी देखा जाएगा, मगर संन्यास नहीं लेने देंगे। और अभी 2 महीने ही नहीं हुआ और वो स्त्री मर गई। जिस दिन वो मर गई उसके बेटे की खबर आई कि क्या आप आज्ञा देंगे हम उसे गैरिक वस्त्रों में माला पहना के सन्यासी की तरह चिता पर चढ़ा जाने दें। काल निर्दयी है, लेकिन अब कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि सन्यास कोई ऐसी बात नहीं है कि ऊपर से डाल दिया जाए, न जिंदा पर डाला जा सकता है न मुर्दा पर डाला जा सकता है। सन्यास लिया जाता है, दिया नहीं जा सकता, क्योंकि मरा आदमी कैसे सन्यास लेगा? दिया जा सके तो मरे को भी दिया जा सकता है।
1: ओशो को संदेश, कुनी सिद्धांत कुनी चिंतन होइन, वहाँको संदेश हो तपाईको रूपांतरण, एउटा विज्ञान हो। उनी महान धार्मिक व्यक्ति बुद्ध पुरुष ओशोले दिनुभएको देशनालाई प्रेमपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा तपाईं प्रति सप्रेम आभार व्यक्त गर्दै प्रभात फेरीबाट आजको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। यस धरतीमा जति पनि प्राणी सबैको मंगल होस्, चित्त निर्मल होस्, रोगमुक्त होस्। भवतु सर्वमंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्।

0: आर अन भक्तपुर एफएम। स्टार अन भक्तपुर एफएम।
1: नौलो नौलो बतास छा नौलो छ सरगम आज को ही

क्यान्सर या फुक्क उपचार विराटनगरे उपलब्ध दु दक्षिण कथैया क्यान्सर या उपचार विधि शल्यक्रिया रेडिएसन नापङ न्युक्लियर मेडिसिन सेवानङ उपलब्ध दु नेपाया दक्को थ्यानङ क्यान्सर या उपचार या निम्ति यदि एयरलाइन्स मार्फत निशुल्क वेगु वानिगु टिकट या व्यवस्था दु उपचार या लागि पिया चुने मागु मधु विराट मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल अन्तर्गत नेपाया नम्बर एक क्यान्सर अस्पताल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराटनगर थप जानकारी या निम्ति सपुल्याप 9761000250

0: स्टार अन भक्तपुर एफएम। स्टार अन भक्तपुर एफएम।
1: नौलो नौलो बतास छा नौलो छ सरगम आज को ही

0: आर अन भक्तपुर एफएम। स्टार अन भक्तपुर एफएम।
1: नौलो नौलो बतास छ, नौलो छ सर।

0: रामपुर FM 105.4 मेगाहर्ट्ज़।
1: The station with the best music.
2: तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम रिक्वेस्ट आओ।
3: गलत हो सब

0: इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।

और अब दोस्तों इस साल के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द सॉन्ग दिल मेरा चुराया क्यों, दोस्तों अमर कौशिक।

मक्खन बक्कन दही चटाकन चू चू भौंफो म्या। एक पहेली बड़े मजे की पूछूं तुम बतला। बोलो रिकी, बतलाओगे?

0: स्टार अन भक्तपुर एफएम। स्टार अन भक्तपुर एफएम।
1: नौलो नौलो बतास छ, नौलो छ सरगम आज कोही